0: अपने पर करें प्रतपाला, अदरा तेरी हड़ियाई नित नानक नाम तिहाई, अदरा तेरी हड़ियाई नित नानक नाम तिहाई।
1: तेरी पग

देहन फिर ओ परम परिपूर्ण परमात्मा सदा उना जपन वालियां दे अंग संग है। ए शब्द गुरु अर्जन दे पातशाह दा उचारण कीता होया जिदे विच आप कहंदे हन, हे प्रभु हर का नाम हृदय नित ध्यान। हे प्रभु मैं तेरा नाम सदा हृदय विच वसावा। हर का नाम हृदय नित ध्याई, सदा तेरा नाम मैं हृदय विच जपा, मन करके जपा। हर का नाम हृदय नित ध्याई, संगी साथी सगल तराई। ए नाम जपन दे सदके जिना जिना ने भी मेरे नाल बैठ के तेरा सिमरन कीता है, नाम जपया है और जपणगे, हे प्रभु कृपा करी उन्हां सारियां नूं ही अपने नाम दे सदके तार लई। हर का नाम हृदय नित ध्याई, संगी साथी सगल तराई। ते जो नाम जपदे हन गुरु अर्जन दे पातशाह क्यों दिन, फिर उना दे अंग संग होंदा है गुरु। गुरु मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा संभाले। जो सिमरनगे परमेश्वर दा नाम, साईं दा नाम, आख्या सदा गुरु उना दे अंग संग है। गुरु मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा संभाले। जद नाम जपेगा प्राणी, नाम जप के उसकी आत्मा परमेश्वर दे चरणा नाल जदों एक मिक हो जाएगी। बाबा नंद सिंह जी महाराज क्या करते सन, जदों जीव नाम जपदा है फिर नाम जपन वाला और नामी विच फर्क नहीं रह जाता। हर हर जन दो एक है, बिप विचार किछ नाही, जल ते उपज तरंग जियो, जल ही बिखे समाए। नाम जपन वाली आत्मा परमेश्वर दे एडे नेड़े हो जांदी है कि फिर जदों संसार दे दुख आउंदे हन तां उस आत्मा नूं ओ दुख दुखी नहीं कर सकदे। दुखां विच भी रह के ओ सदा परमात्मा दा शुकराना करदा है, पानी मंदा है ते की कहिंदा है, तेरा किया मीठा लागे। हे प्रभु तू सुख विच रखिया, मैनू दुख विच रखिया है, ए तेरा ही हुक्म है, तेरा ही पाना है। तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। गुरु अर्जन दे पातशाह कहंदे ने, मैं तां हे प्रभु सदा तेरे चरणा विच यही आराधना करांगा कि तू मैनू अपना नाम बख्श, मैं तेरा सिमरन करा, अमृत वेले उठ के तेरी भक्ति करा। और जो परमात्मा दी भक्ति करते हैं गुरु अर्जन देव पातशाह कहते हैं, गुरु सदा उन्हां दे अंग संग है।

दरबार विच बैठे साई मियां मीर आया बेनती कीती गरीब निवाज आपने जो ए बाणी रची है तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मांगे आपने बाणी रची है तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि आप जलाई ऐसा कौन है जेड़ा अपने शरीर नू अग उपर रख के ते फिर भी परमात्मा दे पाणी विच रहे फिर भी उसके हुक्म विच रहे ऐसा कौन है कृपा करो सिर्फ ए बाणी मुझ बानी ही उचारी है कि इसके ऊपर कोई अमल करने वाला भी है ता गुरु अर्जन देव पातशाह कहने लगे साईं मियां मीर समा आवेगा ये जो अखर असी लिखे हैं जो अखर उचारे हैं इन्हां ते अमल भी करके दसांगे ते फिर समा आ बने जदों बादशाह जहांगीर दा दीवान चंदू जिसकी लड़की दा रिश्ता लैके लागी हरमंदर साहब आए गुरु हरगोबिंद जी वास्ते ते लागियां ने जदों गुरु हरगोबिंद जी नूं वेख्या तां आख्या इस तों सुंदर संसार ते होर कौन हो सकदा है ते चंदू दीवान दी लड़की वास्ते ए वर सब तों अच्छा है उन्हां बेनती कीती गुरु अर्जन देव महाराज नूं कि ए लड़का चंदू दीवान दी लड़की वास्ते असी आप पासों मंगदे हां साहब जी ने क्या अच्छा जिस वेले लागी सगन दे के गए ते चंदू दीवान नूं जाके आख्या कि असी आप दी लड़की दा रिश्ता गुरु अर्जन देव पातशाह दे सपुत्र गुरु हरगोबिंद जी नाल कर दिता है ता चंदू दीवान जिसनू अपने पद दा अहंकार सी कि मैं राजे दा दीवान हां बड़े गुरु घर वास्ते कुबोल बोलिया कि तुसी ए रिश्ता किथे कर आए हो मैं किथे राजे दा दीवान और किथे ओ फकीरां दी गद्दी ए तुसी चंगा नहीं कीता गुरु घर वाल जदों कुबोल बोले कुबोल बोले ते ए गल संगत नूं पता लग गई तां दिल्ली दी संगत ने चिट्ठी लिखी गरीब नवाज इस चंदू दीवान दा जो लड़की दा रिश्ता है गुरु हरगोबिंद जी दे नाल नहीं करना क्योंकि इसने गुरु घर दी वास्ते कुबोल बोले हैं ते जदों साहब जी ने मना कर दिता तां ए चंदू पापी दे मन विच आया कि ए तां मेरी बड़ी बेदबी कीती है इन्हां ने गुरु अर्जन देव जी ने मेरा रिश्ता मोड़ दिता इन्हां नूं अजे नहीं पता कि मैं किस पदवी ते हां ते मैं इन्हां दे नाल की कुछ कर सकदा तां फिर चंदू दीवान ने छल करके चिट्ठी लिखी गुरु अर्जन देव जी नूं कि आप लाहौर आओ अंतर जामी गुरु अर्जन देव पातशाह तां सब कुछ जानदे सन जिस वेले चलन लगे हरमंदर साहब तों कुछ प्यार वाले नाल तुर पए बाबा बुढ़ा जी ने बेनती कीती गरीब नवाज किथे तुरे हो आख्या बाबा जी लाहौर किसे जरूरी काम नूं चले हैं किसे जरूरी काम नूं चले हैं तां बाबा बुढ़ा जी तां ब्रह्म ज्ञानी सन जिस वेले नेत्र बंद करके वेख्या के किस काम नूं चले हैं साहिब जी तां की तकिया लाहौर दे विचकार चंदू दीवान दी हवेली विच गुरु अर्जन देव पातशाह तत्ती लोहां ते बैठे होए पुब्बां निकलियां बाबे बुढ़े दियां तां गुरु अर्जन देव जी ने कहा बाबा जी ए राज राज ही रहन देना खोलना नहीं गरीब निवाज चले हो एक वरां मात गंगा जी नूं तां दर्शन दे जाओ जो गुरु अर्जन देव जी दी सुपत्नी सन
ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੱਲੇ ਹਨ ਲਾਹੌਰ, ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਜਾਣਗੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਏ। ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬੁੱਭਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੰਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਆਏ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਹੱਥ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਨਾਲ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

इस वेले आख्या गुरु अर्जुन देव ने, मियां मीर जितने तन पर पड़ेंगे छाले उतने सिख होंगे सिदक वाले, उतने ही सिख सिदक वाले होंगे। जे गुरु ने पाना नहीं मनिया तो सिखा ने फिर पाना क्या मनना है। ते फिर जिस वेले चंदू आया अजे भी मन नहीं भरिया तो साहब जी कहन लगे, चंदू साडा मन करदा है असी इशनान करिए। तीन दिन हो गए हैं चौकड़ा मार के बैठे हैं, साडे प्यार वाले जेडे नाल आए सन उन्हां नूं बुलाओ। ओ प्यार वाले गुरु अर्जन देव पातशाह नूं प्यार नाल इस वेले रावी दे किनारे ते लियाए। साहब जी कहन लगे, हुण साडा गुरु नानक दे पास जाण दा समां आ गया, असी जपजी साहब पढ़ांगे ते जपजी साहब दा जिस वेले समाप्ति करांगे अपना शरीर अलोप कर लांगे रावी विच, ते तुसी वापस हरिमंदर साहब अमृतसर चले जाणा। ते ए सब नूं आखणा कि गुरु अर्जन जी ने उस अकाल पुरख दे पाणे विच रह के उसके हुक्म विच अपना सिर नवाए। ते जपजी साहब जिस वेले गुरु अर्जन देव जी ने आरंभी, ते जिस वेले जपजी साहब दा भोग पाया, जिनी नाम ते आया गए मुशक्कत काल, नानक दे मुख उजले केती छुट्टी नाल रावी विच अपना शरीर अलोप कर लिया। ते मानो अजे भी रावी दी लहरां विचों ए आवाज गुरु अर्जन देव दी आ रही।

प्यारे गुरुदेव जी, सच्चे पातशाह धन धन सतगुरु साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, सानू अपने ना पवित्र वचना के द्वारा ये दस रहे हैं कि साड़ी जीवन की यात्रा जो है वो सफल क्यों नहीं हो रही, उस दे विच ऑब्स्टैकल्स की हैं। साडे जीवन की जो विधि है वो किस किस्म की है, तो आओ गुरु बाबा जी के चरणों के विचों पूछिए, महाराज असी अपने जीवन की यात्रा किवें सफल कर सकते हैं, असी अपनी जिंदगी नूं किवें रंगीन बना सकते हैं। तो बाबा जी आखते हैं कि तुहानूं तीन चीज़ां मिलियां, नंबर एक बॉडी माइंड एंड सोल, जो उस दिन शब्द दे विच दास ने अर्ज की सी। तो सब तो पहला वह तन नूं शरीर नूं जो पॉइंट आउट करते हैं, कहते हैं असी देखते हाँ कि यह जो शरीर सी एक वहीकल सी, एक साधन सी, जिस साधन दे नाल, जिस वहीकल दे नाल तुसी अपनी यात्रा जो है उसनू तय करना सी, एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बॉडी जड़ी, अजीवात्मा इस दे विच ड्राइवर की तरह बैठा हो। बाबा जी आखते हैं किसी भी यात्रा ते सक्सेसफुली पहुंचने दे वास्ते जो उसका वहीकल है उसका परफेक्ट कंडीशन दे विच होना एब्सोल्यूटली लाजमी है। जे वहीकल बिगड़िया होया है, जे वहीकल रिलायबल नहीं है, तो वो यात्रा जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकती। महाराज जी साडे वहीकल नूं की होया, वट इज रोंग विद अवर वहीकल? वो आखते हैं इत्थे बस नहीं, जदों किसे ने किसे वहीकल दे विच अपनी यात्रा करनी होवे तो उसनू अपने वहीकल दा ए टू जी पूरा पता होना चाहिए, पूरा पता होना चाहिए। तो गुरु साहब देखते हैं कि सानू अपना ये जो शरीर वहीकल है इसका कुछ भी पता नहीं, बस असी जन्म ले लिया है, शरीर सानू मिल गया है, भुख लगती असी खा लें, नींद आती असी सौ लें, प्यास लगती असी पी लें, बोल चाल लें, होर जो शरीर के फंक्शन हैं असी वो कर लें, पर सानू इस वहीकल का कोई पता नहीं है एक की चीज है, एक की चीज है। तुसी अपनी यात्रा किवें सक्सेसफुली अकम्पलिश करो जदों तुहानू अपने वहीकल के मुतलिक ही कोई पता नहीं, एक की वस्तु की है। नंबर एक दूसरी गल ए है जो साडे जीवन दे विच परमारथ रूहानियत आत्मिकता स्पिरिचुअलिटी पीस ऑफ माइंड स्टिलनेस स्टिलनेस ऑफ माइंड कामनेस ऑफ माइंड इनर जॉय एंड
inner bliss, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਜੋ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੰਦੀ ਉਸਦਾ ਕਾਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੋਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੁਣੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

काया कमली है, चली है, उन्हां चीजां दे विच खो गई है, गुम हो गई है, रच गई है, जड़ियां चीजां ने इसे नू ही खराब करना है। स्वाद हन इसलिए ही काया दे वास्ते ही डैमेजिंग बन जांदे हन, लेकिन काया उन्हां दी एडिक्टेड हो जांदी है, इस करके कहिंदे काया कमली। अल्कोहल काया लिए अच्छी है, लेकिन काया नू नहीं पता, काया उसकी एडिक्टेड हो जांदी है, जो चीज ने इसे नू ही बर्बाद कर देना है। तो ड्राइवर जो अंदरला है वह बहुत कमजोर है, वह काया का गुलाम हो चुका है, काया ने ड्राइवर नू टालिया है, काया जो मंगती है वह उसनू प्रोवाइड करी जा रहा है। काया कमली हंस ही आना, तो जिहड़ा हंस है जिहड़ी अंदरली आत्मक जोत है वह कहिंदे हले बहुत मध्यम है, वह न्याणा है, वह हाले उस बुजुर्गी नहीं आई, क्योंकि उसने बुजुर्गों की महापुरुखों की विचार अपने अंदर ग्रहण नहीं की, ना सुनी ना समझी ना विचारी, तो उसके अंदर बुजुर्गी नहीं आई। वह इयाना है जिधर काया लाई फिर है उसके पास वह चलिया फिर है, सारी ह्यूमन सोसायटी जी है वह काया के पिछे चल रही है, सारी ह्यूमन सोसायटी काया ही प्लीज करने के उत्ते लगी पई है। काया कमली हंस इयाना एक पंक्ति छोर आखते हैं महाराज जी, कहते हैं

आशा बंदी मूर्ख दे, ए दे बड़ी मूर्ख है, अगां तो अगां दी आशा बंदी जा रही है, पर इस देही नू ए नहीं दिसदा कि मैं बड़े लंबे समय दे फ्यूचर दे वास्ते अपनिया जो आसामा बन दी हां, पर ये नहीं सोचती कि मैं रहना कदों तक है, कि डे बाय डे मैं ताकतवर होना है कमजोर होना है, डे बाय डे मेरी एज कटनी है या बदनी है, डे बाय डे मेरा एनर्जी लेवल बदना है या कटना है। इस करके एक कंसर्न ही नहीं है, इसका जीव आत्मा इतना न्याणा है कि वो सोचता नहीं कि दिस इज गोइंग टू बिकम वीकर एंड वीकर एंड वीकर, इस दे वास्ते टाइम सिर इस तो मैं अपना कम लवा, और सगों इस दे नाल रलिया होया है अते काया ये जड़ी बड़ी मूर्ख है। तो ये साड़ी सत्संग की हालत है कि इंद्रियां सबल हैं, असी इन्हां नूं वरतना सी पर ये हुण सानूं वरत रही हैं, असी इन्हां नूं वरतना सी पर वरत ये रही हैं सानूं। तो कितनी ट्रेजेडी की गल है, कितने अफसोस की गल है, महाराज जी ने ये इंद्रियां सानूं दित्तियां सन कि इन्हां दे नाल असी अपना परमार्थ की जो यात्रा है वो सिद्ध करनी है, सफल करनी है। और फिर महाराज जी पूछते हैं, भाई ए श्रीदा मेरिया इस जग में आए कि क्या तुद कर्म कमाया, कि तू की कीता है, तू तो सारे दे सारे अपने इस इंस्ट्रूमेंट नू ही डैमेज कर लिया है, पूंडी चाल। कहिंदे अखीर जाके बिरध उम्र दे विच जाके तेरी चाल भी नहीं सुनी रह जांदी, डगमगा के तुरदा है, सोटी दे नाल तुरदा है, लंगड़ा के तुरदा है, पूंडी चाल यानी चाल ही अगली हो जाती, चरण कर खिसरे, हाथ अते पैर ओ खिसक गए हैं, ओ कंबदे हैं। तुचा देह कुमलानी, जड़ी देही दी तुचा है, जड़ी स्किन है, चमड़ी है, ये ते कुमला गई है, ते झुरड़ियां पै गई हैं, फिर असी प्लास्टिक सर्जरीज वगैरह करा के उसनों असी लिफ्ट देने हैं, अपलिफ्ट कराने हैं। तुचा देह कुमलानी, नेत्री तुंद, उन्हां अखियां ने जिन्हां ने ज्ञान पढ़ना सी, साधुआं दे दर्शन करने सन, वो कुछ होर कर दियां रहियां, गुरमुखां दे दीदार नहीं कीते, गुरबाणी दे दीदार नहीं कीते, गुरबाणी पढ़न दा मौका नहीं मिलिया, गुरबाणी पढ़न दा इंटरेस्ट नहीं बनिया, सतपुरखां दे विचार पढ़न दा इसने इस्तेमाल नहीं लिया, हुण कहिंदे नेत्री तुंद, नेत्रां दे विच भी धुंध आ गई है, फॉग आ गई है, क्लीयर दिसदा नहीं, कर्ण पै बहरे, हुण कन्नां तों भी घट सुणदा है, कन्न मिले सन सत्संग सुनन लई, रब दी गल सुन लई, उस पाथ ते चलण दे वास्ते, वध तों वध इनफॉर्मेशन सुनन दे वास्ते, पर कहिंदे हन हुण ओह भी समां लंघ गया, कर्ण पै बहरे, मनमुख नाम ना जानी, इस मनमुख ने नाम रूप वस्तु नूं कहिंदे जिस दे नाल इसने थ्रिल्ड होना सी, फुलफिल्ड होना सी, कंप्लीट होना सी, अकम्पलिश्ड होना सी, सक्सेसफुल होना सी, ओ कहिंदे इस मनमुख ने जानी ही नहीं। ता महाराज जी इस इंसान नूं कहिंदे हन, अंधले क्या पाया जगया, ओ अन्ने तू इस जगत दे विच आके की पाया है, की प्राप्त कीता है,

सारा कुछ गवा के तो फिर चल पे, सारा कुछ गवा के तो फिर केंद्र चले गए अंधले, तू जगत दे विच आके की पाया, जीवन की विदना है, जीवन दी विधि ही नहीं आंदी। महाराज जी ने इस शब्द आख्या है, ए तन माया पाया प्यारे, है मेरे प्यारे, इस तन नू तू माया दी रंगन दे नाल रंग लिया है, लबेड़ लिया है, पाचार दिती है। जदों असीं किसे कपड़े नू डाई करदे हां पहलां उस नू पां चाड़दे हां कि रंग पक्का होवे उतरे ना, कहिंदे इस नू तू माया दी पां चाड़ दिती है, माया दे नाल रंग लिया है, अते माया दे नाल रंगिया होया तेरा ए तन रूप चोला जो है, कहिंदे हन लीतड़ा लब रंगाए अते स्वादां दे नाल इस नू तू रंग लिया है, मेरे कंत न भावे चोलड़ा प्यारे, ऐ मेरे प्यारे वाहिगुरु नू ए तेरा तन ही पसंद नहीं है, यही पसंद नहीं है, मेरे कंत ना भावे उसनू ए पौंदा नहीं है, उसनू ए पसंद नहीं है। जिस तरह दा तू इसनू बना लिया, जिस तरह दा तू इसनू गिजा लिया, जिस तरह दियां आदतां तू इस अपने तन नू पा लईयां हन, कहिंदे हन अकाल पुरख वाहिगुरु नू इस उत्ते कोई प्रसन्नता नहीं है, मेरे कंत ना भावे चोलड़ा प्यारे, क्यों धन सेजे जाए के उसकी तेरी इंटीमेसी किवें हो सकती है, उसका तेरे नाल मिलन किवें हो सकता है, तेरे तन तो उसनू जो है वह बदबू आती है, तेरा तन जो है माया दे नाल दागी हो चुका है, स्पॉटड हो चुका है, ए माया दी पाह दे नाल अते गलत किस्म दे अत्यंत किस्म दे स्वादां दे नाल ए इस दे अंदर चिक्कड़ बनिया होया है, ए तन ही हाले अकाल पुरख वाहिगुरू दे प्रेम दे काबल नहीं है, मेरे कंत ना भावे चोलड़ा प्यारे, क्यों तन सेजे जाए, वो तेरी सेज दे उते किमें आवे, तेरे नाल वसल किमें होवे, तेनू वो मिले किमें, कहंदे हन तू अपने तन नू ही नहीं समझिया। साडी परमार्थिक यात्रा दा हाल, साडी स्पिरिचुअल लाइफ दा ए हाल है कि असी अपने इंस्ट्रूमेंट नू ही नहीं समझे हां। गुरु नानक साहब सतगुरु साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी दे विचों हुण असी इस नू आरंभ करना है, जो कि अगले एक दो दिन इसकी विचार चलती रहेगी, कि सानू गुरबाणी दे विचों सब तो पहला अपने तन दे प्रति समझना चाहिए है कि साडा तन की चीज है, तन की चीज है जिसनों असी दिन रात वरतने हैं, असी वी हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड, पर सानू आज जरूरत है कि असी गुरु बाबा जी सतगुरु साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी दे विचों जो गुरु साहबां ने इस तन दे प्रति सानू ज्ञान बख्शिया है वह सुनीए अते समझिए कि तन की वस्तु है। उस दे उते 13 नुक्ते महाराज जी की बाणी दे विचों मिलते हैं, 13 नुक्ते, तो 13 दे 13 असां सुनने हैं कि उन्होंने तन दे मुतलक अपने विचार दिते हैं। आओ मैं आरंभ करन लगा हां। पहला नुक्ता है तन दे प्रति गुरु महाराज आखते हैं कि तुहानू पता है कि यह तन की है, कहिंदे हन नंबर एक यह दुर्लभ है, दुर्लभ वस्तु वह हुंदी है जिहड़ी दात नाल बख्शिश दे नाल ते मिल जाए, वैसे तुसी उसनू प्राप्त नहीं कर सकते, वह दुर्लभ है। सो साडे पास एक दुर्लभ वस्तु है, दुर्लभ वस्तु वह हुंदी है जिसकी कोई कीमत ना पा सके, कोई कीमत ना चुकाई जा सके। साडे पास जितनिया भी चीजा हन उना दी हरेक भी कोई ना कोई कीमत है, किसे दी घट किसे दी ज्यादा, हरेक देते कोई ना कोई प्राइस टैग लग्या होया है। साडे पास ओ केड़ी चीज है जिस दे उते कोई प्राइस टैग नहीं लग सकता, ओ तन है जिस दे उते कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। तो जे साडे पास एक अजिही चीज है जो जिसकी वैल्यू इतनी है कि उसनू इनवैल्यूएबल कहना पड़ेगा, तो फिर असी कितने क अमीर होए, कितने क असी अमीर होए कि साडे पास एक दुर्लभ वस्तु है जो कि बाय द ग्रेस ऑफ अकाल पुरख सानू प्राप्त हुई। महाराज जी पहला नुक्ता समझाते हैं, ये दुर्लभ है, इसनू नोट कर लेना। कहते हैं लख चौरासी भरमतियां दुर्लभ जन्म पायो,
ਲੱਖ 84 ਜੂਨ ਚ ਭਰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਦੁਰਲੱਭ ਜਨਮ ਦੁਰਲੱਭ ਵਸਤੂ ਹਿਊਮਨ ਫਾਰਮ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਲੱਖ 84 ਭਰਮਤਿਆਂ

मानस जन्म दुलंब है, होए ना बारंबार, जो मन फल पाके पोहिंगरे बहर न लागे डार। जिस तरह दरख्त दे नालों टुट के फल नीचे गिर जाए ते दोबारा ओ टाणी दे नाल नहीं लगदा, एक दफा ए दुर्लभ तन जो है जदों गिर जाएगा धरती उते, फिर इस दे वापस उठन दी कोई उम्मीद, कोई आशा, कोई चांस बिल्कुल नहीं है, ये दुर्लभ। सो वी आर कैरिंग समथिंग विच इज सो इनवैल्यूएबल। हाउ वेल्थी वी आर एंड हाउ मच थैंकफुल वी आर, वी नीड टू आस्क दिस टू अवर सेल्फ। दूसरा नुक्ता, नंबर एक दुर्लभ, दूसरा नुक्ता गुरु बाबा जी आखते हैं ये मंदिर है। कदे असी सोचे कि मैं ही मंदिर हां? आप जी ने कितनी दफा ये विचारिया सोचा होएगा कि यही मंदिर है। बाबा जी की बाणी दसदी है कि मंदिर की है। जो सोचते विचारते जानते हैं ऐसे गुरमुखों नूं तां मैं नमस्कार करदा हां, पर असी बाणी चों तन दे प्रति बॉडी दे प्रति ही इनफॉरमेशन नहीं लई, असी कई दफा बाहरों इनफॉरमेशन इकट्ठी करते फिरते हां, जबकि साडे गुरु साहिबान ने इतना भरपूर ज्ञान बख्शिया है सिर्फ बॉडी दे मुतलक ही। अज इत्थे 10 दिन कीर्तन करिए इस चीज दे उत्ते भी, सिर्फ इस चीज दे उत्ते ही, तां भी ओ इनफॉरमेशन जो है ओ कंप्लीट नहीं हो सकेगी कि बाबा जी ने तन दे उत्ते सानू की कुछ दस्या है कि तन की चीज है, पर असी उसनू किसे होर ही फैशन च पढ़ते हैं। सोच विचार के पढ़ना, ज्ञान नाल पढ़ना ओ होर चीज है। आओ दूसरा नुक्ता, दूसरा पॉइंट महाराज जी दसते हैं ए मंदिर है, टेंपल ऑफ गॉड, दिस इज द रियल टेंपल। इस तो बिना होर कोई टेंपल नहीं, बाणी च किते नहीं आखी, कहिंदे ए मंदिर है। बाणी दा प्रमाण सुन कहिंदे हन

स्पष्ट है नुकता। हर मंदिर ये शरीर है, ये शरीर हरि का मंदिर है, फिर तो इसमें भी नमस्कार करनी बनती, फिर तो ये पूजन योग है। जे ये हरि का मंदिर है, हर मंदिर ये शरीर है, काया महल मंदिर घर हर का हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी का एक घर है, अकाल पुरख वाहिगुरु के निवास का स्थान है। तो फिर सानू इस मंदिर नू मंदिर की तरह रखना चाहिए है। मंदिर के अंदर की हुंदा है, मंदिर के अंदर शांति हुंदी, मंदिर के अंदर पूजा हुंदी है, मंदिर के अंदर कीर्ति हुंदी है, मंदिर के अंदर रेवरेंस हुंदी है। मंदिर के अंदर पवित्रता ही हुंदी है, पवित्रता ही हुंदी है। मंदिर के अंदर रब्बी संगीत हुंदा है, डिवाइन म्यूजिक हुंदा है, कीर्तन हुंदा है। मंदिर के अंदर संगत हुंदी है, साथ संगत हुंदी है। अगर ये मंदिर है तो फिर इस मंदिर का जो एनवायरमेंट है वो सारा मंदिर वर्गा ही होना चाहिए है। अगर ये मंदिर है तो इसके अंदर शांति होनी चाहिए है, टिकाव होना चाहिए है, इसके अंदर हर वक्त पूजा आराधना होनी चाहिए है, इसके अंदर सत्संग होना चाहिए है। मंदिर च प्रभु जी का निवास होता है, गुरुदेव होंगे हैं, इस मंदिर के विच भी हर वेले गुरुदेव की प्रेजेंस महसूस होनी चाहिए है। मंदिर की असी कदे बेअदबी नहीं करते, उपर असी जोड़ा पा के नहीं आ सकते क्योंकि बेअदबी हो जाएगी, फिर इस मंदिर की भी बेअदबी नहीं होनी चाहिए क्योंकि मंदिर की बेअदबी बड़ा वड्डा गुनाह है। इस मंदिर की जो कि इट्टा नाल लकड़ियां नाल पत्थरां नाल बनया है, असी कितने कंसर्न हां कि बेअदबी ना होवे, पर इस मंदिर की बेअदबी जितनी मर्जी हो जाए उसके वास्ते असी कदे कंसर्न नहीं है। सर्टन थिंग्स तुहानू पता है कि असी इस मंदिर च नहीं लिया सकते, खाण वालियां पीण वालियां इस मंदिर च असी नहीं लिया सकते, ना असी इत्थे कुक कर सकते हैं, ना बना सकते हैं, ना वरता सकते हैं। अगर लै आइए बनाइए खाइए पीए तो इत्थे झगड़ा हो जाएगा, पर वो वस्तुआं इस मंदिर च असी किवें लै जाने हैं जिसनू महाराजी मंदिर आखते हैं। इस मंदिर च असी वो तमाम चीजां तां ही लजाने हां कि सानू एक ज्ञान ही नहीं मिलिया गुरु बाबा जी की बाणी तो हाले तक कि असल मंदिर इंसान आ तेरा शरीर है, इस मंदिर दे अंदर ओही कुछ लजा जो जान दे योग है, इस मंदिर दे विच कोई भी ऐसी वस्तु पाई जो योग नहीं है बहुत वड्डा गुनाह अते बहुत वड्डा पाप हो जाएगा। इस मंदिर नू पवित्र तो वध के पवित्र रख, इस मंदिर के अंदर का वातावरण जो है वो पवित्रताई वाला रख, पर साढ़े अंदर की है वैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महा लोभ त्रोह याहू जुक्त बिहाने कई जन्म नानक राख ले हुआ अपन कर कर्म। असी तो ये कुछ पाई बैठे हाँ तो मंदिर की कितनी वड्डी असी बेअदबी कर रहे हैं। तन के मतलब जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है, व्हीकल है, पर

क्रोध नाल प्यार करते हैं। हजूर फरमांदे झूठ बोलना मुर्दार खाना चंगा लगता है, किसे नाल त्रोह करना एनू मिठे लगते ने। हजूर कहते ने ऐ वाहगुरु इन्हां नू रख लै इन्हां औगणा तों।

रोज अरदास करदा सी। है परमात्मा आओ मेरे हृदय जे थड़े ते बैठो, बेनतियां करदा रहा। एक दिन परमात्मा ने बेनती सुन ली, आ गए, कहन लगे खोल भाई बुआ तेरे हृदय दे थड़े ते बैठी है। जां बुआ खोलिया, इस हृदय दे सिंघासन ते बहुत भीड़ कठी हुई हुई, किधरे ईरखा बैठी है, किधरे क्रोध बैठे, किधरे होमे, किधरे लोग, सारा थड़ा भरिया हुआ। परमात्मा ने पूछा बिठाएगा किथे, थड़ा तो तेरा खाली नहीं, एक वस्तु नू कढ़ेगा तां दूजी नू पाएगा, मैनू बिठाण लई किथे था, थड़ा ते सारा भर के रखिया हुआ। कह लगा लै एक तां गल भुली गई सी। आया क्रोध दी बां फड़ी बाहर छड़ आया, फिर आके काम नू बाहों फड़िया, गलों फड़ के बाहर छड़ आया। जामुड़ वेख दे क्रोध उथे ही बैठे, मोह दी बां फड़ दे बाहर छड़ आउंदे, फिर अहंकार नू बाहर छड़न आउंदे, फिर वेख दे मोह उथे ही खड़े। ए विचारा बार अंदर सारिया नू कढ़दा रहा, एक एक नू कह लगा निकलो मैं परमात्मा आ गए उनू बिठाने। ओ कह लगे ओ परमात्मा ते तेरा अज आए, असी तेरे कई जन्मा जन्मा दे साथी, तेनू नहीं छड़ सकते। परमात्मा ने आख्या चंगा तू इन्हां नू बाहर कढ़, फिर समा होवेगा आवांगे, आके बैठांगे, तेरा थड़ा खाली नहीं। हुण जदों थड़ा खाली होया फिर आवांगे। इंतजार करके परमात्मा वापस चला गया। हजूर कहंदे ने हुण समा है, तौबा कर इन्हां गुनाहां तों, अते वाहगुरु दे अगे कर अरदास।

खालसा मेरा रूप है, खालसे दे विच मैं आप वसदा। शब्द बहुत लंबा है पर इतना समा नहीं कि शब्द पूरे पूरे पढ़िए। ऐसे शब्द विच कह देता इस तो वड्डी होर कीड़ी वड्याई हो सके।

इतनी बड़ियाई दी थी और इतों तक चले गए। कहन लगे खालसा मेरी जान की जान। और इस तू पहली पंक्ति खालसा मेरो पिंड प्राण, खालसा मेरी जान की जान। पिंड कहंदे ने शरीर नू, खालसा मेरा शरीर है, खालसा मेरो पिंड प्राण, और खालसा मेरे प्राण है, और खालसा मेरी जान है, खालसा मेरा मां बाप है, खालसा मेरे भैन भरा है, खालसा मेरे रिश्तेदार, और खालसा मेरा सज्जन मित्र है। और इथों तक कह दिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का सारा इतिहास पढ़िए। उन्होंने किधरे कसम नहीं खाधी, पर जद खालसे की गल आई तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने खालसे वास्ते एक कसम खाधी। की कहते हैं, पार ब्रह्म गुरु नानक साखी। मैं पार ब्रह्म गुरु नानक नु साखी रूप जान के ये कहना के खालसे विच अकाल पुरख विच ते मेरे विच कोई फर्क नहीं।